के शब्द भगत पीपा जी दे जेड़े कि अपने शब्द विच आपां नूं उपदेश करदे हन कि जो तुसी बाहर देखदे हो ओ तुहाडे अंदर है। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, पर जो खोजे सो पावे। जेड़ा अपने अंदर झाती मारदे ओनू ही कुछ लभदे। ते नाल ए भी कहा, पीपा प्रणवे परम तत् है, सतगुर होए लखावे। के सतगुरु की कृपा भी जरूरी है, ताही इंसान अपने अंदरों ही उसनू पा सकता है। भगत पीपा जी जिन्ना दा ए शब्द गुरु ग्रंथ साहब दे विच दर्ज है, भगत पीपा जी जिन्ना दा जीवन त्यागमय रहे, आप गगनौर दे राजे सन, राजभाग कोल सी, सारे सुख सन, पर भाग चंगे ने कि परमेश्वर वल भी ध्यान सी। साधा संतां दी बड़ी सेवा करया करदे सन। एक वरी कुछ महात्मा इन्हां दे राज विच आए ने। महात्मा दी सोभा सुन के उन्हां नूं अपने महल विच बुलाया, कीर्तन करवाया, महापुरशां नूं प्रशादा छकाया, सेवा कीती। संत महापुरश बड़े प्रसन्न होए, कहन लगे, राजन तुहाडे विच सेवा भाव बहुत है, असी बड़े प्रसन्न हां, पर ए दसो तुहाडा गुरु कौन है? क्योंकि गुरु तो बगैर गति नहीं हुंदी। ते राजा पीपा कहन लगे, महापुरशो, गुरु तां मैं कोई धारण नहीं कीता, पर तुसी कृपा करो ते दसो मैं किन्नू गुरु धारण करा। ते महापुरशा ने कहा, राजन ऐस वक्त काशी बनारस दे विच ब्रह्म ज्ञानी स्वामी रामानंद जी रहिंदे ने, तुसी उन्हां कोल चले जाओ ते उन्हां नूं अपना गुरु धारण कर लो। स्वामी रामानंद प्रवान भगत ने जिन्हां दा एक शब्द गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज है, कत जाइए रे कर लागो रंग, मेरा चित ना चले मन पयो भंग। संतां दे कोलों स्वामी रामानंद दी उपमा सोभा सुनी, स्वामी जी कोल जाण दी तैयारी कीती।

स्वामी जी नु कहो गगनौर दा राजा पीपा आया वो दर्शन करने चाहता है। सेवादार स्वामी रामानंद जी दे कोल गया, बेनती कीती है स्वामी जी गगनौर दा राजा पीपा आया वो दर्शन करने चाहता है। स्वामी रामानंद जी राजे की प्रीख्या लैनी चाहते सन कि इहदे मन विच सच्चा प्यार है कि नहीं। सेवादार नूं कहा राजे नूं कहो ओ राजा असी फकीरां दा ते राजे दा मेल की, उहनूं कहो दर्शन नहीं हो सकते। सेवादार ने आके कहा राजन स्वामी जी कहंदे ने तू राजा असी फकीर तेरा ते साडा मेल की दर्शन नहीं हो सकते। सेवादार कोलों ए गल सुनी पर मन दे विच सच्चा प्यार सी। जिन्ने हाथी घोड़े सन सारे दान कर दिते, सोने दे कड़े ला के ओ भी दान कर दिते, कीमती बस्तर भी दान कर दिते, सादे कपड़े पाले।

राजे पीपे ने सब कुछ दान कर दिता, फकीरां वाले कपड़े पा ले ने, सोना चांदी सब कुछ गरीबां विच वंड दिता। वो कहिंदा मैं हुण गरीब हाँ, मैनू दर्शन चाहिए ने। पर स्वामी रामानंद हाली होर प्रीख्या लैनी चाहते सन। कहन लगे अच्छा राजे नूं कहो जे उन्हें दर्शन करने ने ते शहर दे बाहर एक खूह है, उहदे विच डुब मरे दर्शन हो जाणगे।

अपनी आत्मक शक्ति नाल राजे दियां लत्तां दा बल खिंच लिया। राजा पैर अगे रखदा है पर पैंदा पिछा नूं। खूह दे कोल जा पहुंचिया, छाल मारन लगा। पिछू सेवका ने राजे नूं फड़ लिया। राजे ने स्वामी जी उठे ने चल के दर्शन कर ले। राजा पीपा वापस आया, स्वामी रामानंद के चरणा ते मत्था टेकिया। कहन लगा, स्वामी जी मैनू चेला बनाओ। ते स्वामी रामानंद कहन लगे, राजन तू राजा है, राज दे सुख भोगे ने, पर भगत बनना बड़ा औखा है, सब कुछ छड़ना पवेगा। क्या स्वामी जी, मैं सब कुछ त्याग देंगा पर मैनू गुरु दीख्या दियो। स्वामी रामानंद ने गुरु दीख्या दीती, राजे नूं सेवक बनाया ते उपदेश कीता कि तू हुण वापस जा, प्रजा की सेवा कर, ए भी तेरा धर्म है, ए भी तेरी भगती। राजा पीपा वापस आ गया पर राजकाज विच मन नहीं लगता। बहुता समा बंदगी करन ते अपना बतीत करदे पर मन राजकाज विच बिल्कुल नहीं लगता। ते एक दिन राज भाग छड्डिया, फकीरां वाले कपड़े पा के अपनी एक राणी दे नाल, उन्हें भी सादे कपड़े

के पहला कृष्ण भगवान की नगरी द्वारका नगरी चलिया जावे ते भगत पीपा जिड़ा हुण राजा नहीं रहा ओ द्वारका नगरी नूं तुर पिया। ओ भगत पीपा जी सानू उपदेश करदे ने भाई ना कछ आए वो ना कछ जाए वो राम की दुहाई मैं तुहानू राम की दुहाई देना ओदा नाम जपो क्यों भटकदे हो ना माया ने नाल जाना ना तुहाडे शरीर ने तुहाडी नाल जाना एक राम का नाम है जिन्हें तुहाडी सहायता करनी है भाई मैं तुहानू वार वार दुहाई देना राम दी।

वो कहन लगा अजीब आदमी है, द्वारका नगरी विच बैठा है ते पुछदा है द्वारका नगरी किथे। वो खिज के कहंदा है ए पानी दे विच द्वारका नगरी है ते इत्थे ही भगवान रहंदा है। भगत बीबे ने सुनदे सार पानी विच छाल मार दित्ती, पिछे पिछे राणी ने छाल मार दित्ती, पर भगवान वो तो हर जगह मौजूद है ते पानी दे थल्ले भगत तो पहला भगवान जा बैठे ने। तला ते लोग कठे हो गए ने कि आदमी ते औरत पानी विच डुब गए ने, पर पानी दे थल्ले भी भगवान है, हर जगह वो रहिंदा है। ते कृष्ण भगवान पानी दे थल्ले भगत बीबे नूं लैण वास्ते आए, अपने कोल बिठाया, भगवान दे प्रतख दर्शन कीते। भगवान ने खुश होके

कालजुग में कीर्तन पर्दा न गुरमुख जपिए लाहत्या न परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी गुरु नानक देव जी तो लेके 19वीं सदी तक गुरबाणी का कीर्तन तंती साज जिवें के रबाब सरंदा ताउस सरंगी आदि राही हुंदा सी। 20वीं सदी दे आरंभ होने ते गुरबाणी का कीर्तन पच्छम दे साज हारमोनियम ते होना शुरू हो गया, जिस करके तंती साज अलोप हो गए। तंती साजा राही गुरबाणी दे कीर्तन दी जो इलाही धुन निकलदी है ओ हारमोनियम ते नहीं निकल सकदी, जिस करके सिख जगत ने अकाल अकैडमी बड़ू साहिब दे बच्चियां नूं कहा कि तुसी कीर्तन विच मुड़ सत्कार योग पुरातन तंती साज सुरजीत करो। सात संगत जी, संत अतर सिंह जी महाराज मस्तू आने वाले दी लाई हुई फुलवाड़ी अकाल अकैडमी गुरुद्वारा बड़ू साहिब दे बच्चियां लई अरदास करो कि आप दे इन निमाणे बच्चे गुरु साहिब दे बख्शिश कीते पुरातन तंती साज रबाब सरंदा ताउस सरंगी ते कीर्तन करके गुरु साहिब दी बख्शिश लैन। हुण जिस शब्द दा गायन असीं करन जा रहे हां ए पावन शब्द तन गुरु नानक देव जी महाराज दा राग बसंत हिंडोल विच उच्चारण कीता है। बसंत हिंडोल महला पहला। राजा बालक नगरी काची दुष्टा नाल प्यारो दोए माई दोए बापा पड़िए पंडित करो बिचारो स्वामी पंडता तुम देहो मती किन विद पावो प्राण पति रहाओ पितर अगन वनस्पत मौली सागर पंडे पाया चंद सूरज दोए घर ही पितर ऐसा ज्ञान ना पाया राम रवंता जानिए एक माई भोग करे ताके लखन जानिए खिमा तन संग्रह कहे आ सुनहे ना खाया मन है तिना ही सेती वासा प्रणवत नानक दासन दासा खिन तोला खिन मासा।

हर जियो निमाणिया तू मान। हे हरि वाहिगुरु, तू निमाणिया दा किवें मान है? पातशाह कहिंदे ने आड़ दम को छिपरो, अद्धी कौडी दा छिंबा होयो लखीना, लखां दा हो गया। पर किवें? पाई साहिब भाई गुरदास जी कहिंदे ने

जो भीख मंगावे तो क्या कट जाए, तू हर पज मन मेरे पद निर्वाण, बहर न होए तेरा आवन जान। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मानयोग साध संगत जीओ, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन बाणी अंदर समुची मनुखता दी जीवन कल्याण दी गल कीती गई है। गुरमत इस ख्याल नाल सहमत नहीं कि संसार विच दो चार बंदे जड़े ने वो उच्चे सुचे पवित्र जीवन वाले हो जान, ते बाकी दी दुनिया उसे तरह कीड़िया मकौड़िया वांग जमदी मरदी रहे। गुरमत इस आशे नूं प्रगट करदी है कि सारा संसार जड़ा है इस दे उधार दा बंदोबस्त वाहिगुरु अकाल पुरख ने कीता होया है। इसे आशे दी व्याख्या बाणी विच कीती गई है। बड़े चिर तो मनुख दे सामने यह समस्या है कि यह जड़ी दुनिया की दौलत है, संसार की माया है, इहदे नाल मैं किवें वरतना। ते धर्म दे धर्मी तो लोग आम तौर ते गल कहिंदे ने कि जिन्ना चिर इहनूं छड्डोगे नहीं उन्ना चिर रब दे नाल ते जोड़ ही नहीं सकदे। जदों गुरमत नूं चंगी तरह समझने आ तां इह गल साडे पल्ले पैंदी है कि गुरु साहिब ने इस माया नूं त्यागण दा कोई उपदेश नहीं दित्ता। गरीबी है या अमीरी, थोड़ी माया है या बहुती, इस गल दा सवाल नहीं है। सवाल यह है कि माया दे हुंदियां होयां उस वाहिगुरु अकाल पुरख नाल अपने चित नूं जोड़ना। भाई साहब भाई गुरदास कहिंदे ने, कहिंदे ने गुरसिख जोगी जागदे माया अंदर करन उदासी। आंदे ने गुरसिख योगी हन, ऐसे योगी के माया विच रहिंदे होए भी ओ चितन ने जागदे होए ने समझदे ने भी इस माया ने साडे नाल नहीं जाना। वो कहिंदे ने भी ये माया परमात्मा ने बनाई है, माया तो उसने संसार बनाया है, इसलिए किते भी मनुख चला जाए मनुख दा शरीर मनुख दी अपनी होंद भी माया नाल है, माया दा पिछा नहीं छड़दी, माया तो बिना यह संसार हो नहीं सकदा। इस करके गुरु साहब ने कहा इनू नफरत करन दा कोई मतलब नहीं, ये परमात्मा ने बनाई है। गुरु अमरदास पातशाह ने श्री राग विच एक बचन कीता है, सतगुरु कहिंदे ने माया मोह मेरा प्रभ कीना आपे भरम भुलाए। बाणी नूं जदों ध्यान नाल पढ़ीए साडियां कई समस्या हल हो जांदियां, पर असीं बाणी वल ध्यान नहीं दिंदे, बंदियां वल ध्यान दिंदे, मुश्किल साडी आए। कहिंदे फलाणा बाबा कह गया, बस स्यापा पै जांदा सानूं। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਕੀਨਾ ਆਪੇ ਭਰਮ ਭੁਲਾਏ, ਮਨਮੁਖ ਕਰਮ ਕਰੈ ਨਹੀਂ ਬੂਝੈ ਬਿਰਧਾ ਜਨਮ ਗਵਾਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ इस जग में है चानन कर्म वसै मन आए। गुरबाणी की रोशनी नाल ए गल साडी समझ विच आ जाएगी, पता लग जाएगा कि असा संसार दे अंदर इस माया विच रहिंदे आ, किस तरह उस मालक नाल अपनी सांझ पाउणी है। इसे करके भगत जी का बचन जो कीर्तन द्वारा सरवण कीता है, कहिंदे ने तू हर भज मन मेरे पद निर्वाण, बहुर ना होए तेरा आवन जान। कहिंदे ने हे मेरे मना, तू उस वाहिगुरु अकाल पुरख नूं चेते कर जो आप निर्वाण पद दा मालक है, ते तैनू उस अवस्था विच लै जाएगा।
तेरा जमन मरण कटिया जाएगा। ए केंद्री ख्याल है शब्द का। तो कहते ने भी किसे कीमत उत्ते भी तू परमात्मा नू नहीं छड़ना। जिस वेले त्रिलोचन ने नामदेव नू कहा मैं सुनिया तू भगत है, कादा भगत है, तू ते हर वेले कपड़िया च लगा रहना, कदी धोना है, कदे छापदा है, कदे कुछ करदा। वो कहन लगा ठीक है मैं कम करदा हां, लेकिन भाई कम करदिया होया मैं उस मालक नू चेते करदा रहना, भुलदा नहीं, मैं उन्हें याद करता रहना वा। हाथ पांव कर काम सब चीत निरंजन नाल। मैं चंगे तो चंगा कपड़ा भी हाथ विच लैके कदे ए नहीं सोचता कि कपड़ा ही सब कुछ है। मैं उस वाहेगुरु अकाल पुरख तो सदके जाना भी जिसने ए सुंदर कपड़ा बनाउण दी विध बनाई है। मैं सुंदरता देख के भी उन्हू याद कर लैना, मैं मुसीबतां देख के भी उन्हू याद कर लैना। हर हालत विच उन्हूं याद करन दी गल मैनू विसरदी नहीं। इसे करके कहिंदे ने जो राज देहे तां कौन वडाई, जो भीख मंगावे तां क्या घट जाई। कहिंदे ने भिख्या मंगाएगा तां वी तैनू चेते करदा रहना, ते ये याद राज दे देगा मैं तां वी तैनू चेते करदा रहना। ये नहीं कि मैं राज दी वडियाई विच पै जाणा ते समझणा भी सब कुछ राज ही है, ते भिख्या मंगावे ते मैं तेनू गाला कढ़न लग पावां भी तू कहदा रब मैनू दिता कख नहीं। वो कहंदे नहीं, किसे हालत विच भी मैनू रखे, मैं मेरा कम है तेनू चेते रखना, तेनू याद करना। इतिहास की एक वार्ता है सतगुरू गुरु हर राय साहब दे इतिहास की। उन्हां दा एक सिख होया, बड़ा गरीब जिहा सिख सी, किरती किसान, भाई पूंगर करके इतिहास ने उहदा नां दिता है। खेती करदा मिहनत, पर गुरु साहब के दसे उपदेश के मुताबिक अमृत वेले उठदा, नाम जपदा, बाणी पढ़दा, फिर अपनी किरत विच लग जांदा। कोई अतिथि आवे, आया गया लोड़वंद, कोई जिज्ञासु आवे, वह सेवा करदा। ते एक चलदा फिरदा साधु भी आ गया, बड़ी सेवा कीती उसने, बड़ा प्यार कीता। ते उस साधु दे मन विच ख्याल आया भी इस बंदे कोल दौलत नहीं है, पर प्यार, सेवा, हमदर्दी, मनुखता दा सब तो उच्चा गुण जो किसी दौलत नाल प्राप्त नहीं हुंदा, इस मनुख दे कोल है। ते मेरे कोल पारस है जो सोना बना सकदा है तात नूं, ते इस नूं पारस दे देवां, इहदे कोल अमीरी दौलत आ जाएगी, ते होर भी वध सेवा कर सकेगा, इहदी गुरबत दूर हो जाएगी। खबरे इसे वास्ते ही सेवा करदा होएगा कि कितों कुछ लभ जाए। उसने पेशकश की, उस सिख नूं कहा भी ये पारस तू लै लै। कहण लगा मेरे किसे काम नहीं, मैनू वाहिगुरु अकाल पुरख ने बहुत कुछ दिता है, गुरु दे उपदेश दे मुताबिक जिंदगी सबर सिदक नाल गुजर रही है, सेवा विच नाम जपण विच कोई ढिल नहीं है, दसां नवां दी किरत करदा हां। वो कहण लगा नहीं, तेरा गुजारा तंग है, मुश्किल नाल रोटी चलती है। कहण लगा चंगा फिर, जे तुसी महापुरुष हो इसी गल ते आए हो, उन्हें कई मारी धरती ते, तोआ कढ दिता छोटा जिहा, आखण लगा इत्थे रख दिओ, ते मिट्टी पाती। समा बीत गया, साल दो साल लंघ गए, ते साधु दे मन विच ख्याल आया भी चल के देखा ते सही भी उस बंदे नूं पारस दिता सी ते उत्थे तां महल खड़े होए होणगे, नौकर चाकर होणगे सेवा करन लई। जिस वेले आया ते उन्हें वेख्या भी ओते उसी तरह चल रहा काम, उन्हें पुछया आण के, आखण लगा मेरा पारस। सिख कहण लगा मैनू तो याद भी नहीं, वह तो जिथे दबिया सी उथे ही होएगा, तू वरत्या नहीं। कहण लगा महापुरशो मैं तुहानू पहलो भी कहा सी कि मैनू इस वस्तु की जरूरत कोई नहीं, मेरी जिंदगी गुरु पातशाह की सिख्या के मुताबिक बहुत वधिया गुजर रही है, ते मैं किसी लालसा नू लैके कोई सेवा धर्म कर्म नहीं करदा। बड़ा हैरान होया, आखण लगा मैनू अपने सतगुरु दे कोल लैके चलो। गुरु हर राय साहब की चरण शरण विच उस सिख ने लिआंदा ते गुरदेव ने समझाया, आखण लगे देखो तुसी बंदगी का रस्ता अख्तियार करके भी साधु बन के भी अजे भी इस ख्याल विच उलझे हुए हो कि कोई पारस हाथ लग जाए, किसी नूं अमीर कर दईए,
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਰ ਦੇ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਪੂਜਾ ਕਰੇ। ਗੱਲ ਉਥੇ ਦੀ ਉਥੇ ਹੈ, ਤੁਸਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅਸਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਰਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੋ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੋ, ਪੈਸੇ ਕਿਤਨੇ ਵੀ ਆਉਣ, ਘੱਟ ਵੱਧ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹਿਣਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਧਨ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਗੁਆਚਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਬੰਦਾ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਥੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਬੱਝਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਦਾਰਥ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿਚੋਂ ਉੱਠਣ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਨਿਰਾ ਧਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਬਣਾ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਧਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਰਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖੇ। ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਲਕਸ਼ਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਮਾਲਕ ਵਿਚ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਾਸੀ ਸਮਝ ਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਸਮਝ ਕੇ, ਚਾਕਰ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿਚ ਇਹਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਯਾਦ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਹੁ ਕਰ ਪਕਰੀ ਨਾ ਆਈ ਹਾਥ, ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੀ ਚਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾਥ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜੋ ਤਿਆਗ ਦਈ ਤਬ ਉਹ ਚਰਣੀ ਆਏ ਪਈ, ਸੁਣ ਸੰਤੋ ਨਿਰਮਲ ਵਿਚਾਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਗਤ ਨਹੀਂ ਕਾਈ, ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਤ ਉਧਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਰਾਹ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਤਿੰਨੀ ਵਿਚੇ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ। ਐਸੀ ਯੁਕਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਕਿਤਨਾ ਆਵੇ, ਘੱਟ ਵੱਧ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਅੰਤਮ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਅਮੀਰ ਲਈ ਵੀ ਇਹੋ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲਈ ਵੀ ਇਹੋ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਨਾ ਖੁੰਝੀਏ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇ। ਇਨੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।

और रात तक पहुंचिया उ सारी संगत मिल के जदों कीर्तन करती सी ना पहाड़ी इलाका है ये मंडी तो परे है मणिकरण जाइए तो रस्ते में आउंदा ना नगरोटा जदों सारी संगत

चेतन होती खाक में मारी गौर करे, चेतन होती खाक निमाणी गौर करे। अजमला से एक फरीदा तत्म कुंजड़िया, अजमला से एक फरीदा तत्म कुंजड़िया, मनो मचंदड़िया जे जाना मर जाइए कुम ना आइए।

करना कबीरा तूर्थ खेल के पुड़िया बांधी दे दिल तो चार को पेखना अंत खे पीछे सुनी दे डरावनी सुनी दे डरावनी जाजी विचों जाए

गगा गोगन कुंद्रवो सास सास जपनीत काम सासा देता बिल मना करियो मीत।

चलने चलना हार बिचारा ले मनो चले चलना हार बिचारा ले मनो गंडे दिया छे मार तोड़े दिया चिट्ठी नो जिमें पुछ

नाश करे जीवन पर कारण लोचन कछु न सूझे कह कबीर सोरे प्राणी कैद कबीर सुनो रे प्राणी छोड़।

आवन जानी जीव तला ब्यार है जको तो जानो जीव तला ब्यार है जको तो जानो नानक हर गुण गाए सब सुख समान हर गुण गाओ मना सतगुरु सेव प्यार।

तरत आकाश पताल है चंद्र विनाशी पातशाह उमराव खान ताड़े रे जासी रंग तुरंग करीब मस्त

हे मेरे मालिक, सब तेरे कोलो मंग रहे हैं। ते मंगिया उथो ही जांदा है जिथो दात मिलती हो, जिथो मंग पूरी हो जाए। इसलिए सब तेरे कोलो मंग रहे हैं। पर गल कमाल दी है, मंगल वाले बहुतात विच हन जिन्हां दी कोई गिनती नहीं, पर देन वाला इको ही। ते हर मंगते दी मंग वखरी है, ए नहीं कोई कोई मंगदा होवे। जिन्ने मंगण वाले ओनिया ही उन्हां दीयां मंगां। पर हे परमात्मा, तू देन वाला एक है, कुर्बान हां तेथों जो तू सब दीयां मंगां कबूल कर रहे है। हुण गल मंगण दी चली है, ते साहब कहिंदे ने आ हुण विचार इस गल दी भी कर ली है, परमात्मा देन तो इनकार ते नहीं करदा, पर असी मंगना किवें है ते मंगना की है।

ऐसा नहीं कि मंगना माड़ है। हां मंगना चाहिए पर मंगना किवें है ते मंगना की। हुण साहब गिनती पहले उन्हां दी दस देने कि जो मंग रहे ने, कोई मान मंग रहे, मान दा भाव है इज्जत रिस्पैक्ट, तान मांगो, तान दा भाव है जोर विल पावर ताकत, धन लक्ष्मी सुत दे, कोई धन मंग रहे, मनी माया मंग रहे, सुत कहिंदे ने कोई पुत्र मंग रहे, लक्ष्मी कहिंदे ने कोई स्त्री मंग रहे है। हे परमात्मा जिन्हें मंगते उन्नियां उन्हां दियां मंगा, हर कोई मंग अलग अलग कर रहे है पर सब दियां मंगा तू पूरी करी जा रही। मान मांगो, मान इसलिए मंगया क्योंकि मान तो बिना, इज्जत तो बिना जिंदगी अधूरी। संसार विच रिस्पैक्ट इज्जत होनी बड़ी जरूरी। आ तुसी वेख लो कि निर्धन नू, कमजोर नू कदी किसी ने सन्मानिया नहीं, नेड़े बिठाया नहीं। इसलिए कहिंदे ने मान मंगे आ, फिर तान मांगो, तान कहिंदे ने जोर भी मंगे आ, जो तेरा दिता होया मान बरकरार रह सके, उन्हू सांभ सका। धन लक्ष्मी सुत दे, धन भी होना बड़ा जरूरी है। साहबाणी विच कहिंदे ने ना, निर्धन आदर कोई ना दे, लाख जतन करे चित ना धरे। निर्धन नू, गरीब नू कोई आदर नहीं दिंदा, इसलिए इन्हां चीजां दा होना बड़ा जरूरी है। मान मांगो, तान मांगो, तन लक्ष्मी सुत दे। परमात्मा दे तन होवे, लक्ष्मी स्त्री भी चाहीदी है। भगत धन्ना जी कहिंदे ने घर की गेहन चंगी, जन धन्ना लेवे मंगी। घरवाली भी चंगी होनी चाहीदी है, सुगुण सुशील सियाणी होनी चाहीदी है। कहिंदे ने फिर सुत, हे परमात्मा पुत्र भी घर विच चाहिए क्योंकि पुत्र भी एक निशान है, उहदा भी घर विच होना बड़ा जरूरी है। धन बहुता होवे, हर खुशी घर विच होवे, ते जे घर पुत्र नहीं, संतान नहीं, ते तां भी दुख है, वह भी बर्दाश्त नहीं हुंदा। इस तरह हे परमात्मा हर कोई तेरे कोल मंग मंग रहा है। मन मांगो, तान मांगो, तन लक्ष्मी सुत दे। किस लिए मांग रही? साजनो तू मीत मेरो, गह तेरे सबके। तू मेरा सज्जन नहीं, तू मेरा मित्र नहीं, उस मित्र होने के नाते मैं ये मंगा तेरे कोलो मंग रही हां। सतगुरु कहिंदे ने ये मंग जायज होगी क्योंकि तू नू अपना सज्जन बना ले, अपना मित्र बना ले। वाकई ही भाई जी उन्हू अपना बना के मंगे ते हर दाद चोली पैसे

फिर मंगन जाइए। ऐसी मंग ना करिए जे दोबारा मंगनी पै जाए। कहते मंगना भी है तो एको बार मंग लो, क्योंकि परमात्मा को जो असी मंगना है वह मिल जाना है। ते मंगन लगे इस गल नू सोच लेना चाहिए कि मैं मंग की दे। हुण साहिब सानू यह गल समझांदे ने

है। केसो केसो कुकिए नासो ये आसार रात दिवस के कुकने कबू को सुने पुकार, कभी ते पुकार सुनेगा ना, बस मंगता मंगी जाए, मंग बार बार दोहराई जाए, किवे मंगे बबीहे दी तरह। उस चात्रक दी नहीं आई जेड़ा बार बार प्यू प्यू करदा रहिंदा, मंगी जांदा है ना, दिन विंद है ना रात विंद है, वो पुकारा करी जांदा है। बबीहा बोल रहा सी, किसी ने आवाज मारी ते आखिया बबीहा क्यों प्या बोलना है? कहना एक बूंद चाहिए, एक बूंद ली बोल रहे हैं। मंगती का पहला गुण है जी, कहने संसार विच कितना बड़ा समुद्र है, नदियां नाले ने, सागर हैं, तालाब हैं, वो कितों भी एक घुट पानी का पी के अपनी प्यास बुझा ले। कहने नहीं, ये पानी मेरी प्यास नहीं बुझा सकते, मैनू तो एक बूंद चाहिए, एक बूंद वास्ते मैं इतना प्यू प्यू कर रही हूं। ख्याल करियो जी, एक बूंद जल कारण चात्रक दुख पावे, एक बूंद वास्ते वो किन्ना बोल ले। कहना जा जाके सौ, आप भी सौ ते मैनू भी सौन दे, क्यों नींद हराम कर रहे? बबीहा नहीं मुड़िया जी, बबीहा बोलता जा रहे। आखिर की होया, वो एक लिव नाल बोल रहा सी, एक कोलो मंग रहा सी। बाणी विच फैसला है जी,

कह रहे हैं नहीं है, चला जा। कहना नहीं, कुछ ते दे के तोर, कुछ ते मेरी चोली पा, मैं तेरे को लाए बगैर नहीं जाना। इना ठीठ बनदा है कई बार मालिक किनिया गल्लां करदा, देन वाला बहुत गल्लां करदा पर वो बर्दाश्त करे, हर गल नूं सुने, क्योंकि ठीठ बनदे। जब तक ठीठ नहीं बनदा तद तक दात नहीं मिलनी। पावो दान ठीठ होए मन, ठीठ बन के मंगी जा मंगी जा मंगी जा। हुण गल आ गई तीसरे गुण दी। तीसरा गुण है जी मंगता डर ना छड़े। किवें ताटी दर प्रभ मंगना दर कदे न छोड़े। दर फड़ के बह जाए ते दर ना छड़े। हे मालिक मंग रहे तीठ बन गए, दर नहीं छड़ना, दात लैके जान। पर हुंदा की है, असी सिर्फ मंगना ते जान लैने, मंगना आउंदा नहीं। मंगना की है ए भी पता नहीं, मंगना किवें है ए भी नहीं जानदे। ते जिहड़े मंगते दे गुण ने ओ ते साडे

एक आया जितना चिर तेरा खसम जीव आत्मा तेरे घर विच वसदा है सारे लोकी तेनु जी जी आखदे हन सारे तेरा आदर सत्कार करदे हन पर सह फरमाउंदे हन हे काया हे जिंदे जदों तेरा निमाणा कंत जीव आत्मा उठ के तुर पवेगा तदो कोई भी तेरी बात नहीं पूछेगा जो साहेब अपनी बाणी द्वारा फरमान कर रहे हैं।

जितना चिर तू पेके घर विच भाव इस संसार विच जितना चिर तू पेके घर विच रह के उस खसम प्रभु दा सिमरन करेंगी तद ही सहुरे घर विच परलोक विच जाके तू सुखी वसेंगी। जो साहेब अपनी बाणी द्वारा प्रमाण कर रहे हैं।

सतगुरु रायपुर विच आए चरण पाए बेंत संगतां ने दर्शन कीते बख्शां हासिल कीतियां तां इन्हां दोनां नूं पता लगा सोना ते मोहना कि साहिब कलगीधर पातशाह इत्थे आए हन चरण पाए हन क्यों ना असीं वी चल के दीदार करिए। मन विच उबाल उठिया दोनों पचे कि चल के साहिबां दे दीदार करिए। पर जिस वक्त साहिबां दे दीदार करन आए पर साहिब अगे नहीं हन दर्शन नहीं होए ता फिर कन्ना विच ओ आवाज पई कि ठाकुर दर्शन नहीं देवेगा। ता जिस वक्त साहिब वापस जान लगे ता ए दोनों जने अद्धा कु मील अगे जाके खलो गए कि एथों दी साहिब लंघन गए ता असी दर्शन कर लवांगे। पर संगत ता उस रस्ते तो लंघी पर सतगुरां ने अपना घोड़ा मोड़ लिया खेतां दे रस्ते दी लंघ गए ता फिर कन्नां विच ए आवाज गूंजी ठाकुर दर्शन नहीं देवेगा। ता हुण इन्हां दे मन विच ए निश्चा हो गया कि सचमुच सतगुर दर्शन नहीं देने ता दर्शना दी होर लालसा वधी मन विराग विच आ गया ता अरदास कीती पातशाह एक घड़ी भी तेरे तो बगैर नहीं रह सकते कृपा करो एक घड़ी भी तेरे तो बगैर नहीं रह सकते एक पल जुगां दे समान बीत रहा है जो सहबी अपनी बाणी द्वारा फरमान कर

मेरी चोली किसे ने नहीं पड़ी। इस वास्ते मैं तेरे दरबार विच आया और सुने जो तेरे दर ते आउंदा है उदी चोली कदी खाली रह नहीं जांदी, ओ सदा तेरे दरबार तो चोलियां भरती जांदा है। सत सहित बोलो श्री। इस वास्ते हक हक आगाह गुरु गोबिंद सिंह शाहे शहनशाह।

देख रहा पता गुरु गोबिंद सिंह, जानू दिल रहा गुरु गोबिंद सिंह। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह, तेरी वर्गी कोई तेज नहीं चला सकता संसार विच, और तू सारिया दा दिलों का हाल जानता है।

रहा कथा गुरु गोबिंद सिंह, जानू दिल रहा रहा गुरु गोबिंद सिंह, साहिबे साहिबे अकलील गुरु गोबिंद सिंह, जिले हक तसलील गुरु गोबिंद सिंह। आप कहते हैं तू दुनिया दे ताज दा मालक है, संसार दा मालक है, और अकाल पुरख वाहेगुरु दे पाणी नू मनन वाला है। सात संगत बोलो श्री, क्योंकि तेरे जैसा संसार ते होर कोई शहनशाह ना होया और ना होएगा। तू भगत भी है, तू दानी भी है, और तू शुरवीर भी है। भगत एडा है कि जो आनंदपुर का किला उजड़ गया, पिछे मुगल सेना लगी हुई, 500 के करीब सिंह धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह के नाल, जाउंद्या जाउंद्या जो अमृत वेला होया तो साहब जी ने आख्या भाई दया सिंह कितने दिन हो गए हैं कीर्तन नहीं सुने, ते वेखना भाई अमृत वेला हो गया, आशा दी वार दा समा हो गया, कोई है कीर्तनिया पर सानू कीर्तन सुनाओ। सात संगत बोलो श्री। भाई दया सिंह जी कहन लगे पातशाह पिछे दुश्मन फौज आ रही है, इस वेले तां किते दूर निकल जाइए चंगा है, ते आप कीर्तन सुनन दी कह रहे हो। आख्या हां दया सिंह, कीर्तन आत्मा दी खुराक है, आत्मा का भोजन है। कितने कु सिंह हन नाल? आख्या गरीब निवाज कोई लगभग 500 सिंह हन नाल। आख्या फिर अद्धे कीर्तन विच बह जाओ, ते अद्धे थोड़ी दूरी ते मोर्चा ला के खरार दियो सारे हन, जे दुश्मन दल आवे ते उसनु रोक के रखन। कीर्तन आरंभ हो गया, उत्थे दुश्मन दल ने चढ़ाई कर दिती, सिंह लड़ रहे हैं, इत्थे साहब जी अडोल कीर्तन बह के सुन रहे। सत संगत बोलो श्री। इत्थे आशा दी वार दी समाप्ति हुई, सो करे जे तिसे रजाए, सो करे जे तिसे रजाए सुध। साहब जी ने अकाल पुरख दे चरणा विच शीस चुकाया, ताई टांगू ने आके खबर दिती खुफिए ने कि साहब जी आ दुश्मन दल मारो मार करता आ रहा है, ते जेड़े लगभग 250 सिंह अगे मोर्चे ते खिलारे सन सारे शहीद हो गए हैं।